0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 91.8 FM, always had touchy।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। श्रोताओं, आज हमारा और आपका यह सफर एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका है। कबीर साहब के शब्दों में, शब्दों के अनमोल मोतियों को समेटते हुए हम इस मोड़ तक आए हैं और आज का जो सूत्र है वह हमारी आंखें पूरी तरह खोल देने वाला है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई व्यापारी बाजार में अपना सबसे कीमती हीरा लेकर जाए और वहाँ किसी कांच के रंग बिरंगे खिलौने के लालच में आकर उस बहुमूल्य हीरे को मुफ्त में दे दें, और जब वह घर लौटने लगे तो वह कांच का खिलौना भी रास्ते में टूट कर बिखर जाए। आप ऐसे व्यापारी को क्या कहेंगे? महामूर्ख, जिसने अपनी असली खजाना भी खो दिया और जिसके हाथ में हाथ अंत में कुछ भी नहीं बचा। अफसोस कि यह हम सब भी आज जिंदगी के बाजार में ठीक यही व्यापार कर रहे हैं। कबीर साहब आज हमारी इसी नासमझी का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। दिन गवाया दुनी सो, दुनी न चाली साथी, पाई कुल्हाड़ी मारिया गाफिल अपने हाथी।

0: थी। श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, दिन गवाया दुनी सो, तुमने इस दुनिया यानी दुनियादारी के सुखों, धन दौलत और प्रपंचों के चक्कर में पड़कर अपने दिन यानी अपनी आध्यात्मिक पूंजी, अपना धर्म और अपनी भीतरी चेतना को पूरी तरह से गंवा दिया। तुमने संसार को पाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? दुनी न चाले साथी। जब मौत का बुलावा आया तो वह दुनिया जिसके लिए तुमने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला और तड़पे, वह दुनिया भी तुम्हारे साथ नहीं चली, यही किनारे पर खड़ी रह गई। यह मूर्खता पर चोट करते हुए कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, पाई कुल्हाड़ा मारिया। यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे किसी इंसान ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली हो। गाफिल अपने हाथी, और यह आत्मघाती काम उस गाफिल यानी लापरवाह और अज्ञानी इंसान ने किसी और कहने पर नहीं बल्कि अपने ही हाथों से किया है। अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार कर वह अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा है। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा इंसानी मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस का चरम विश्लेषण है। मनुष्य का जीवन दीन और दुनी का एक संतुलन होना चाहिए था, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा गहरा है कि मनुष्य दृश्य संसार के पीछे भागते भागते अदृश्य अर्थात परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि संसार की कोई भी भौतिक वस्तु मनुष्य के पार आपके साथ नहीं जा सकती। जो साथ जा सकता है वह है आपकी चेतना की शुद्धता, आपका राम नाम का सुमिरन। जब मनुष्य इस सत्य को भूलकर केवल संग्रह में लगा रहता है तो वह विधाता के लिए दिए सबसे बड़े अवसर को नष्ट कर देता है। वह आत्मिक आत्महत्या है जहां मनुष्य स्वयं ही अपनी मुक्ति के द्वार बंद कर लेता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज अपनी जीवन यात्रा का हिसाब किताब लगाइए। हम सुबह से रात तक जो भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, क्या उसके चक्कर में हमारा दिन यानी हमारा भीतरी सुकून, हमारा विवेक और हमारी करुणा खो तो नहीं रही है? कहीं हम भी अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस गाफिल यानी लापरवाही की नींद से बाहर आने की। संसार में रहिए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपनी आत्मा की पूंजी को दांव पर मत लगाइए। उस राम नाम को संभाल कर रखिए जो इस संसार में भी आपके साथ हैं और इस संसार के बाद भी आपका इकलौता सहारा है। अपने हाथों का आत्मनिर्माण में लगाइए, आत्मनाश में नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मन भावन 90.8 FM, always heart touching.
2: Fear is your power, fear is your soul, and fear is everything you think. Therefore, you fondle fear, you pamper fear, you kiss fear, and dance with fear on your shoulder freely. Now, you're not ashamed of fear. Fear is invisible part of your being, and because of fear, you have been a slave. Because of your traditional power are exhausted, because of fear, conscious doesn't come to life. Because of fear, your thoughts are ruined, and still you say, fear is your lifeguard. Without fear, you shall fear supportless. Fear, you have so secured that it is your forefather and inheritance in your future too. You follow adamant tradition and rituals with faith in fear, and your life is ruled by anarchy of illusions and by the tradition that discriminate the human beings. Endorse yourself repeatedly while you hand over fearful custom to the next generation and ask them to take an oath as to keep up and preserve pure tradition even at the cost of life. In your adamant pure tradition, woman of house is not liberated till today. You have enslaved her at your feet. You have imprisoned her behind parda, burkha, ghungat, put on hold in the house and breeding like beast, kept up raping her physically and mentally, feeling crushed. In the pure tradition, by enrooting that infection in the idea of womanhood, and you exclaimed, your husband is your god and made her slave. Though she has brain power and ability to think, you torture her and went on endorsing man-woman inequality. You got haunted everywhere and you named truth to the pure tradition, and the definition of truth turned to the idea of arbitrary pleasure. So while seeking truth, due to incomprehension of definition, numerous herds ran towards fiction. Oh man, adhering to rational faculties, following the path of progress, you didn't figure out the basic conscious knowledge. So your statics of discrimination increase with multiplication, and there spread epidemic everywhere like that. The disease of discrimination spread everywhere, among them the men, this Brahmin, that Kshatriya, this Vaishya, that untouchable. Such differentiative journey of pride spread abundantly. This white, that black, that tall, that short, this short nose, that flat nose, this one of this religion, that one is of those religion, this one of this religion, that one of that religion, this one is the sect, and that one of that sect, this belongs to this gender, that belongs to that gender, male, female. How many differences? Differences, how many? Differences based on distinction, distinction within diction, sub-distinction, a blurring of distinction, and

0: azdıran kiyo.
1: अरे भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हंसी तरंग सुनिए।
2: अच्छा तू मला एकच सांगतो, स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
3: मी काय म्हणतो, हास्य तरंग स्वर अनंत केंद्रावर हास्य तरंग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नौजवान साथियों, क्या हमें ये महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई दैवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए कि हम आजाद हो जाएं? क्या हम आजादी के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? जिन्हें आजाद होना है उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानों, जागो, उठो, हम काफी देर सो चुके। हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है, क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों और औरतों के खून से लिखा है। ये अंश है नौजवान भारत सभा लाहौर के घोषणा पत्र का, जिसे सरदार भगत सिंह ने युवाओं को संगठित करने के उद्देश्य से तैयार किया था। भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर भगत सिंह ने भारत की युवा शक्ति को जागृत और संगठित करने का प्रयास किया था, और उनके आह्वान पर अनगिनत युवाओं ने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह के संपर्क में आकर आजीवन क्रांति पथ पर चलने वाले ऐसे ही एक युवा थे, पंडित किशोरी लाल। किशोरी लाल का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के धर्मपुर गांव में हुआ था। उनके पिता रघुवीर दत्त शास्त्री एक अध्यापक थे तथा भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में सक्रिय थे। उनके बड़े भाई भी आर्य समाज के प्रचारक थे, जिनका अनेक क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। किशोरी लाल की आरंभिक शिक्षा धर्मपुर के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए वो क्वेटा गए, जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेटा में उनके पिता संस्कृत अध्यापक के पद पर नियुक्त थे। यहां से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किशोरी लाल ने उच्च अध्ययन के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़ते समय ही किशोरी लाल भारत नौजवान सभा के संपर्क में आए। उनके पिता और तीन बड़े भाई पहले ही राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। परिवार में राष्ट्र चेतना के स्वर सदा से ही गूंज रहे थे, इसलिए किशोरी लाल का भारत नौजवान सभा से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था, जिसकी स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। इस सभा से जुड़ते ही किशोरी लाल भगत सिंह के सीधे और करीब संपर्क में आ गए। यही वो बिंदु था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। नौजवान भारत सभा का गठन एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ था। लाला हरदयाल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काकोरी कांड के बाद छिन्न भिन्न हो गया था, उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही नौजवान भारत सभा देश के युवाओं को संगठित कर रही थी, और आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रयासों से ये संगठन पुनर्जीवित हुआ, जिसका नया नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस तरह किशोरी लाल भगत सिंह के अंतरंग साथी के रूप में इस संगठन से जुड़ गए। भगत सिंह के साथ बैठकों में शामिल होकर वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और देश के लिए ही जीने मरने की कसम खा ली।

किशोरीलाल जब जेल में एक कैदी के रूप में बंदी बनाए जा रहे थे, तब 77 दिन लंबी ऐतिहासिक भूख हड़ताल में वो शामिल हुए। उन्होंने मुल्तान, लाहौर और मॉन्टगोमरी की जेलों में अपनी लंबी सजा काटी। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण लगभग 5 साल उन्होंने एकांत कारावास में बिताए। किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें वहां भेजने के लिए कोई संवाद नहीं किया था, इसलिए पंजाब के गृह सचिव ने उन्हें अंडमान द्वीप भेजने के लिए अनुपयुक्त पाया और वो लाहौर तथा मुल्तान आदि की जेलों में रहे। सदाचरण के कारण 1 जुलाई सन 1943 को किशोरीलाल की सजा में छूट स्वीकृत हुई और तब तक उन्होंने 14 वर्ष से अधिक समय कारागृह में बिता लिया था। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अपने रिहा होने का दावा भी प्रस्तुत किया, किंतु ब्रिटिश काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा दी गई है, जबकि साधारण आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष मानी गई है। भले ही वो अंडमान के जेल में न हो, किंतु उनके मामले में ये अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने लंबा कठिन समय कारागृह में बिताया और सन 1946 में वे रिहा हुए। अपनी रिहाई के बाद ट्रेड यूनियन के मोर्चों पर उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ काम किया। इसके साथ ही कृषि और कृषकों के हित में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जमीनी स्तर पर लोगों की मदद के लिए उन्होंने कई प्रकल्प चलाए। हम जानते ही हैं कि भारत की आजादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगाली शासन जमाए बैठे थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में भी पंडित किशोरीलाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही और सन 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त होकर भारत में शामिल हुआ। किशोरीलाल ने जालंधर में पंजाब बुक सेंटर के प्रभारी के रूप में भी काम किया तथा वे जालंधर में देशभगत यादगार समिति में भी बहुत सक्रिय रहे। पंजाब के निकट फगवाड़ा में एक सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु 11 दिन संघर्ष करने के बाद 11 जुलाई सन 1990 को वे उस अनंत ज्योति में लीन हो गए। नमन ऐसे महान क्रांतिवीर देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ला, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM. ऑलवेज हर्ट टच.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: दिल से सुनो, दिल से सुनाओ, रेडियो 1 भावन 90.8 एफएम, ऑलवेज हैड टची।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। श्रोताओं, आज हमारा और आपका यह सफर एक बहुत ही खूबसूरत और ऐतिहासिक पड़ाव पर पहुंच चुका है। कबीर साहब के शब्दों के अनमोल मोतियों को समेटते हुए हम इस मोड़ तक आए हैं और आज का जो सूत्र है वह हमारी आंखें पूरी तरह खोल देने वाला है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि कोई व्यापारी बाजार में अपना सबसे कीमती हीरा लेकर जाए और वहाँ किसी कांच के रंग बिरंगे खिलौने के लालच में आकर उस बहुमूल्य हीरे को मुफ्त में दे दें, और जब वह घर लौटने लगे तो वह कांच का खिलौना भी रास्ते में टूट कर बिखर जाए। आप ऐसे व्यापारी को क्या कहेंगे? महामूर्ख, जिसने अपनी असली खजाना भी खो दिया और जिसके हाथ अंत में कुछ भी नहीं बचा। अफसोस कि यह हम सब भी आज जिंदगी के बाजार में ठीक यही व्यापार कर रहे हैं। कबीर साहब आज हमारी इसी नासमझी का कच्चा चिट्ठा हमारे सामने रख रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह सूत्र। दिन गवाया दुनी सो, दुनी न चाली साथी, पाई कुल्हाड़ी मारिया गाफिल अपने हाथी।

0: साधो गाफिल अपने हाथी। श्रोताओं, कबीर साहब कह रहे हैं, दिन गवाया दुनी सो, तुमने इस दुनिया यानी दुनियादारी के सुखों, धन दौलत और प्रपंचों के चक्कर में पड़कर अपने दिन यानी अपनी आध्यात्मिक पूंजी, अपना धर्म और अपनी भीतरी चेतना को पूरी तरह से गंवा दिया। तुमने संसार को पाने के लिए अपनी आत्मा का सौदा कर लिया, लेकिन नतीजा क्या निकला? दुनी न चाले साथी। जब मौत का बुलावा आया तो वह दुनिया जिसके लिए तुमने पूरी जिंदगी पाप किए, झूठ बोला और तड़पे, वह दुनिया भी तुम्हारे साथ नहीं चली, यही किनारे पर खड़ी रह गई। यह मूर्खता पर चोट करते हुए कबीर अगली पंक्ति में कहते हैं, पाई कुल्हाड़ा मारिया। यह तो ठीक वैसा ही हुआ जैसे किसी इंसान ने अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली हो। गाफिल अपने हाथी, और यह आत्मघाती काम उस गाफिल यानी लापरवाह और अज्ञानी इंसान ने किसी और कहने पर नहीं बल्कि अपने ही हाथों से किया है। अपने ही पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार कर वह अपनी बर्बादी का जश्न मना रहा है। अगर इसे हम दर्शन शास्त्र की दृष्टि से समझें तो यह दोहा इंसानी मूर्छा यानी अनकॉन्शियसनेस का चरम विश्लेषण है। मनुष्य का जीवन दीन और दुनी का एक संतुलन होना चाहिए था, लेकिन माया का प्रभाव ऐसा गहरा है कि मनुष्य दृश्य संसार के पीछे भागते भागते अदृश्य अर्थात परमात्मा को पूरी तरह भूल जाता है। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि संसार की कोई भी भौतिक वस्तु मनुष्य के पार आपके साथ नहीं जा सकती। जो साथ जा सकता है वह है आपकी चेतना की शुद्धता, आपका राम नाम का सुमिरन। जब मनुष्य इस सत्य को भूलकर केवल संग्रह में लगा रहता है तो वह विधाता के लिए दिए सबसे बड़े अवसर को नष्ट कर देता है। वह आत्मिक आत्महत्या है जहाँ मनुष्य स्वयं ही अपनी मुक्ति के द्वार बंद कर लेता है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज अपनी जीवन यात्रा का हिसाब किताब लगाइए। हम सुबह से रात तक जो भी जोड़ तोड़ कर रहे हैं, क्या उसके चक्कर में हमारा दिन यानी हमारा भीतरी सुकून, हमारा विवेक और हमारी करुणा खो तो नहीं रही है? कहीं हम भी अपने ही हाथों अपने पैर पर कुल्हाड़ी तो नहीं मार रहे हैं? आज कोशिश कीजिए इस गाफिल यानी लापरवाही की नींद से बाहर आने की। संसार में रहिए, जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन अपनी आत्मा की पूंजी को दांव पर मत लगाइए। उस राम नाम को संभाल कर रखिए जो इस संसार में भी आपके साथ हैं और इस संसार के बाद भी आपका इकलौता सहारा है। अपने हाथों का आत्मनिर्माण में लगाइए, आत्मनाश में नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साथ हो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: Radio Mandhavan, 90.8 FM, always heart-touching.
2: Fear is your power, fear is your soul, and fear is everything you think. Therefore, you fondle fear, you pamper fear, you kiss fear, and dance with fear on your shoulder freely. Now, you're not ashamed of fear. Fear is invisible part of your being, and because of fear you have been a slave. Because of your traditional power are exhausted, because of fear conscious doesn't come to life, because of fear your thoughts are ruined, and still you say fear is your lifeguard. without fear, you shall fear supportless fear. You have so secured that it is your forefather and inheritance in your future too. You follow adamant tradition and rituals with faith in fear, and your life is ruled by anarchy of illusions and by the tradition that discriminate the human beings. Endorse yourself repeatedly while you hand over fearful custom to the next generation and ask them to take an oath as to keep up and preserve pure tradition even at the cost of life. In your adamant pure tradition, woman of house is not liberated till today. You have enslaved her at your feet. You have imprisoned her behind parda, burkha, ghungat, put on hold in the house and breeding like beast, kept up raping her physically and mentally, feeling crushed. In the pure tradition, by enrooting that infection in the idea of womanhood, and you exclaimed, your husband is your god, and made her slave, though she has brain power and ability to think, you torture her and went on endorsing man-woman inequality. You got haunted everywhere and you named truth to the pure tradition, and the definition of truth turned to the idea of arbitrary pleasure. So while seeking truth, due to incomprehension of definition, numerous herds ran towards fiction. O man, adhering to rational faculties, following the path of progress, you didn't figure out the basic conscious knowledge. So your statics of discrimination increase with multiplication, and there spread epidemic everywhere like that. The disease of discrimination spread everywhere, among them the men, this Brahmin, that Kshatriya, this Vaishya, that untouchable. Such differentiative journey of pride spread abundantly. This white, that black, that tall, that short, this short nose, that flat nose, this one of this religion, that one is of those religion, this one of this religion, that one of that religion, this one is the sect, and that one of that sect, this belongs to this gender, that belongs to that gender, male, female. How many differences? Differences, how many? Differences based on distinction, distinction within diction, sub-distinction, a blurring of distinction

0: 아즈드란 히어.
1: अरे भाई नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? अरे आप हंसी तरंग सुनिए।
2: अच्छा तुम्हाला एक सांगतो, स्वर अनंत केंद्रावर ऐकत जा हास्य तरंग।
3: मी काय म्हणतो, हास्य तरंग स्वर अनंत केंद्रावर हास्य तरंग।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। नौजवान साथियों, क्या हमें ये महसूस कराने के लिए कि हम गुलाम हैं और हमें आजाद होना चाहिए, किसी दैवी ज्ञान या आकाशवाणी की आवश्यकता है? क्या हम इंतजार में बैठे रहेंगे कि कोई दैवी सहायता आ जाए या फिर कोई जादू हो जाए कि हम आजाद हो जाएं? क्या हम आजादी के बुनियादी सिद्धांतों से अनभिज्ञ हैं? जिन्हें आजाद होना है उन्हें स्वयं चोट करनी पड़ेगी। नौजवानों, जागो, उठो, हम काफी देर सो चुके। हमने केवल नौजवानों से ही अपील की है, क्योंकि मानव प्रगति का संपूर्ण इतिहास नौजवान आदमियों और औरतों के खून से लिखा है। ये अंश है नौजवान भारत सभा लाहौर के घोषणा पत्र का, जिसे सरदार भगत सिंह ने युवाओं को संगठित करने के उद्देश्य से तैयार किया था। भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर भगत सिंह ने भारत की युवा शक्ति को जागृत और संगठित करने का प्रयास किया था, और उनके आह्वान पर अनगिनत युवाओं ने अपना संपूर्ण जीवन देश को समर्पित कर दिया। भगत सिंह के संपर्क में आकर आजीवन क्रांति पथ पर चलने वाले ऐसे ही एक युवा थे, पंडित किशोरी लाल। किशोरी लाल का जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के धर्मपुर गांव में हुआ था। उनके पिता रघुवीर दत्त शास्त्री एक अध्यापक थे तथा भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह के पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन में सक्रिय थे। उनके बड़े भाई भी आर्य समाज के प्रचारक थे, जिनका अनेक क्रांतिकारियों से मिलना जुलना था। किशोरी लाल की आरंभिक शिक्षा धर्मपुर के ही प्राथमिक स्कूल में हुई। मैट्रिक की पढ़ाई के लिए वो क्वेटा गए, जो कि अब पाकिस्तान में है। क्वेटा में उनके पिता संस्कृत अध्यापक के पद पर नियुक्त थे। यहां से मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद किशोरी लाल ने उच्च अध्ययन के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। डीएवी कॉलेज लाहौर में पढ़ते समय ही किशोरी लाल भारत नौजवान सभा के संपर्क में आए। उनके पिता और तीन बड़े भाई पहले ही राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। परिवार में राष्ट्र चेतना के स्वर सदा से ही गूंज रहे थे, इसलिए किशोरी लाल का भारत नौजवान सभा से प्रभावित होना स्वाभाविक ही था, जिसकी स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी। इस सभा से जुड़ते ही किशोरी लाल भगत सिंह के सीधे और करीब संपर्क में आ गए। यही वो बिंदु था जिसने उनके जीवन की दिशा बदल दी। नौजवान भारत सभा का गठन एक महान क्रांतिकारी विरासत को पुनर्जागृत करने और आगे बढ़ाने के संकल्प के साथ हुआ था। लाला हरदयाल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काकोरी कांड के बाद छिन्न भिन्न हो गया था, उसे पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से ही नौजवान भारत सभा देश के युवाओं को संगठित कर रही थी, और आगे चलकर चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के प्रयासों से ये संगठन पुनर्जीवित हुआ, जिसका नया नाम हुआ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। इस तरह किशोरी लाल भगत सिंह के अंतरंग साथी के रूप में इस संगठन से जुड़ गए। भगत सिंह के साथ बैठकों में शामिल होकर वे उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और देश के लिए ही जीने मरने की कसम खा ली।

किशोरीलाल जब जेल में एक कैदी के रूप में बंदी बनाए जा रहे थे, तब 77 दिन लंबी ऐतिहासिक भूख हड़ताल में वो शामिल हुए। उन्होंने मुल्तान, लाहौर और मॉन्टगोमरी की जेलों में अपनी लंबी सजा काटी। अपने विद्रोही स्वभाव के कारण लगभग 5 साल उन्होंने एकांत कारावास में बिताए। किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा हुई थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उन्हें वहां भेजने के लिए कोई संवाद नहीं किया था, इसलिए पंजाब के गृह सचिव ने उन्हें अंडमान द्वीप भेजने के लिए अनुपयुक्त पाया और वो लाहौर तथा मुल्तान आदि की जेलों में रहे। सदाचरण के कारण 1 जुलाई सन 1943 को किशोरीलाल की सजा में छूट स्वीकृत हुई और तब तक उन्होंने 14 वर्ष से अधिक समय कारागृह में बिता लिया था। इसी को आधार बनाते हुए उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 491 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत अपने रिहा होने का दावा भी प्रस्तुत किया, किंतु ब्रिटिश काउंसिल ने अपने निर्णय में कहा कि किशोरीलाल को आजीवन निर्वासन यानी काला पानी की सजा दी गई है, जबकि साधारण आजीवन कारावास की अवधि 14 वर्ष मानी गई है। भले ही वो अंडमान के जेल में न हो, किंतु उनके मामले में ये अवधि 20 वर्ष होनी चाहिए। इस तरह उन्होंने लंबा कठिन समय कारागृह में बिताया और सन 1946 में वे रिहा हुए। अपनी रिहाई के बाद ट्रेड यूनियन के मोर्चों पर उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ काम किया। इसके साथ ही कृषि और कृषकों के हित में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। जमीनी स्तर पर लोगों की मदद के लिए उन्होंने कई प्रकल्प चलाए। हम जानते ही हैं कि भारत की आजादी के बाद भी गोवा पर पुर्तगाली शासन जमाए बैठे थे। गोवा मुक्ति आंदोलन में भी पंडित किशोरीलाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही और सन 1961 में गोवा पुर्तगालियों से मुक्त होकर भारत में शामिल हुआ। किशोरीलाल ने जालंधर में पंजाब बुक सेंटर के प्रभारी के रूप में भी काम किया तथा वे जालंधर में देशभगत यादगार समिति में भी बहुत सक्रिय रहे। पंजाब के निकट फगवाड़ा में एक सड़क दुर्घटना में वो गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, किंतु 11 दिन संघर्ष करने के बाद 11 जुलाई सन 1990 को वे उस अनंत ज्योति में लीन हो गए। नमन ऐसे महान क्रांतिवीर देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ला, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।